0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने

0: मूल जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस: Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross First Class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Evian, France today. To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
8: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
7: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
9: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
7: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
9: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
7: Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Slovakia has filed this report.
10: Several historic decisions with the potential to significantly strengthen India-Slovakia relations were taken during the Prime Minister's visit to Bratislava. 11 MOUs were signed yesterday during Prime Minister Narendra Modi's visit. These agreements are expected to enhance cooperation in areas such as defense, civil nuclear energy, tourism, advanced technologies including quantum communication and artificial intelligence, and higher education. During talks between Prime Minister Narendra Modi and Slovak Prime Minister Robert Fico, both sides also decided to establish a joint working group to strengthen cooperation in combating terrorism. Prime Minister Modi

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:40 और 40 सेकंड हो चुके हैं और आपका अपना चैनल FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान. तो चलिए गीत संगीत की इस महफिल का आगाज करते हैं और पहला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत ट्रैक से थोड़ा हटकर मैं शुरुआत कर रहा हूँ. गेस कीजिए इसकी क्या वजह है और व्हाट्सएप के जरिए हमें बताएं कि ये गाना मैंने क्यों प्ले किया है.
2: जरा नजरों से कह दो जी.

0: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री ट्रेड

0: सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पर आएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत और हेमंदा की आवाज और देव साहब पर ये गाना फिल्माया गया था और अपने समय का एक बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग है। और मैंने हेमंत कुमार के दो गाने बैक टू बैक प्ले किए और इसकी एक खास वजह है क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 16 जून 1920 को बनारस में उनका जन्म हुआ था। वो एक सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई। वैसे वो हारमोनियम बजाया करते थे और उन्होंने अपना जो ज़्यादातर काम है वो हिंदी और बंगाली सिनेमा में किया। लोग प्यार से, इज्जत से उन्हें वॉइस ऑफ गॉड भी कहा करते थे। कितनी बड़ी बात है किसी इंसान को, किसी कलाकार को वॉइस ऑफ गॉड कहा जाए। और रविंद्र संगीत में वो माहिर थे। 1971 में एक बंगाली फिल्म आई थी निमंत्रण और 1986 में एक और बंगाली फिल्म आई थी लालन फकीर। इन दोनों फिल्मों में उन्हें उनके गाने के लिए बेस्ट सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था और 1970 में उन्हें पद्मश्री और 1987 में पद्म भूषण भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जी हाँ, उन्होंने लेने से मना कर दिया। बंगाली फिल्मों से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और सिंगर के तौर पर उनकी पहली हिंदी फिल्म थी मीनाक्षी और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली हिंदी फिल्म थी आनंद मठ। तो उन्हीं की फिल्म का एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है अनुपमा, आवाज़ है लता जी की।

से और शुभदा ने, साथ ही साथ किशोर नायक जी ने और प्रमोद चिंचोलकर जी ने, फिरोज सिंगनपुरिया जी ने और पंकज माहौड़ ने अमरावती से, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आज हमारे हेमंदा की बर्थ एनिवर्सरी है तो हम उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हीं के एक दो और प्यारे से गीत सुनते हैं।

0: प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:08 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविन चौहान। और हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर प्रणव शिंदे ने बहुत ही खूबसूरत एक बात कही है जो मैं आपके साथ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आज हेमंत दा की यानी हेमंत कुमार जी की बर्थ एनिवर्सरी है और 16 जून 1920 को उनका जन्म हुआ था जैसा मैंने बताया, और आज ही के दिन हमारे हिंदी सिनेमा के एक रॉक स्टार, डांसिंग स्टार मिथुन दा का भी हैप्पी बर्थडे है, यानी 16 जून 1950 को उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और दोनों की एक फिल्म कॉमन है जिसका नाम है 20 साल बाद। 20 साल बाद में हेमंत दा ने संगीत दिया था और 20 साल बाद मिथुन दा की फिल्म थी, और 20 साल बाद यानी जो पहली 20 साल बाद थी वो आई थी 1962 में और मिथुन दा की फिल्म आई थी 1989 में। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि कॉमन बात है, कॉमन इंसिडेंस है। तो चलिए, इस जानकारी के लिए हम प्रणव शिंदे जी आपका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सुनते रहिए एफएम रेनबो, बहुत ही प्यारा गीत मेरी मोहब्बत आप सबके लिए।

0: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोमिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
2: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ दोस्तों, आज मिथुन द रॉक स्टार डांसिंग स्टार का भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे है, तो हम उन्हें उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 16 जनवरी 1950 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। और मैं व्हाट्सएप के जरिए आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, जिसका आपको जवाब देना है। मिथुन दा का जन्म के समय यानी फिल्मों में आने से पहले क्या नाम था? तो व्हाट्सएप के जरिए हमें बताएं कि उनका असली नाम फिल्मों में आने से पहले क्या था। और उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बिजनेसमैन हैं और नेता भी हैं। जी हाँ, राजनीति में भी वो काफ़ी सफल हैं। और 1976 में उनकी पहली फिल्म आई थी मृग्या, जिसे मृणाल सेन ने डायरेक्ट किया था। बहुत ही कमाल की फिल्म थी। इस फिल्म से उन्हें बहुत नाम मिला, प्रसिद्धि मिली, लेकिन उतना काम नहीं मिला। यहाँ

के राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला, लेकिन इस फिल्म के बाद कई साल तक उन्हें खाली रहना पड़ा। और 1982 में आई डिस्को डांसर, और डिस्को डांसर ने उनके टैलेंट का डिस्को हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में बजा दिया, और ऐसा बजा दिया कि हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी थी यानी उस वक्त, वो उनके डांसिंग स्टाइल की, उनके जलवों की दीवानी हो गई। एनीवे, उन्हें भारत में तो पसंद किया ही गया, साथ ही साथ सोवियत यूनियन में भी उनका बहुत क्रेज़ रहा। भारतीय सिनेमा के वो ऐसे दूसरे सितारे हैं जिनका सोवियत यूनियन में बहुत क्रेज़ हुआ, यानी पहले थे राज कपूर साहब और दूसरे थे मिथुन दा। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत,

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो।

0: रही है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जी हाँ दोस्तों, 9:30 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल FM रेनबो। तो चलिए बात करते हैं आज की अगली हस्ती क्या है। जी हाँ, आपने बहुत सारी इनकी फिल्में देखी हैं और जब वी मेट जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म इनकी लिस्ट में शामिल है और इस फिल्म के ये डायरेक्टर रहे हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म थी और इनका नाम है इम्तियाज अली। 16 जून 1971 को जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, साथ ही साथ रंगमंच भी किया। मुंबई में टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और 2005 में इनकी पहली फिल्म आई थी सोचा ना था। और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में इतना अच्छा शायद ना सोचा हो। एनीवे, इस फिल्म को तारीफ तो मिली। जी हाँ, क्रिटिक्स ने तारीफ तो की लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुई, चली नहीं। लेकिन 2007 में आई जब वी मेट सुपर डुपर हिट हुई और इसके बाद इनका करियर आगे बढ़ता रहा। ये एक डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो इम्तियाज़ जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर जी की।

0: जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत के दीवानों एफएम के चाहने वालों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मिथुन दा का फिल्मों में आने से पहले असली नाम क्या था, तो हमारे कई सारे लिसनर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनके नाम हैं प्रमोद कारखानीज पुणे से, तनुजा शर्मा अंधेरी से, और लाली झा अजमेर से, संयोगिता चौहान इंदौर से, पंकज माहौड़ अमरावती से, और प्रणव शिंदे मानखुर्द से, और मंगला मुकुंद पठारे डीएन नगर अंधेरी वेस्ट से, चेतन कुमार बिहार से, प्रकाश शिंदे भी मानखुर्द से, और वासुदेवन बदलापुर से। इन्होंने सही जवाब दिए हैं। शुभदा, दीपाली शिरोडकर, ईश्वरी जोग, महेश बोरा अजमेर से, आप सभी का जवाब एकदम सही है। और हमारे एक और लिसनर हैं राम प्रजापति, आपका भी जवाब सही है। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ ही गीत संगीत का कार्यक्रम मस्त मुंबई खत्म होता है। सुनते रहिए एफएम रेनबो। इस शो में आपके साथ था मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। लव यू ऑल।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Welcome back Mumbai. आप सुन रहे हैं FM Rainbow. ये समय है न्यूज हेडलाइंस का. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया. सम्मान स्वीकार करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत दोस्ती को समर्पित है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कल कहा कि भारत को अब संसार में कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में पहचाना जाता है. मुंबई में गैर फीचर फिल्म महोत्सव मिफ 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. मुरुगन ने कहा कि भारत ऐसी रचनात्मक प्रतिभाओं का विकास लगातार कर रहा है जो अपने

की सोच और उसे कार्य रूप देने की क्षमता के कारण अभूतपूर्व और बेजोड़ हैं। तरल प्राकृतिक गैस LNG ले जा रहे टैंकर दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये भारत का पहला LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है। अंत में खेल। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हो गया है। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया है। काबो वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वो जिना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई भी मौका नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइन, सुनते रहिए FM रेनबो। तो गीत संगीत के दीवानों, FM के चाहने वालों, वेलकम बैक। 10:02 और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल RJ रविंद्र चौहान। जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक चिया करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, और इस गीत के जरिए मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, आपको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से छूना चाहता हूँ। आवाजें हैं रफी साहब और लता जी की, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन घाटगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी। शाइन नेचुरली।

जी हाँ दोस्तों, लागी छूटे ना और दिल की लगी हुई कभी छूटती भी नहीं है। 10:19:26 और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत। और दोस्तों आज है 16 जून और बहुत ही खास दिन है। और आज इस स्लॉट में हम बात कर रहे हैं भारत हमको जान से प्यारा है। जी हाँ, हम सभी भारत में रहते हैं और वाकई में भारत हमें बहुत प्यारा है। और हम सभी की भारत के लिए कोई ना कोई एक किसी ना किसी तरह बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन आज का इतिहास हमें बताता है कि इस भारत के लिए कितने लोगों ने कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। 16 जून 1858 का दिन था। ग्वालियर के पास दोस्तों एक जगह है मुरार। जी हाँ, मुरार। तो मुरार में एक लड़ाई लड़ी गई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, और अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को गदर का नाम दिया था। और जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी आज ही का दिन 16 जून 1858, कह सकते हैं कि लगभग एक साल बाद, तो ये इस क्रांति की आखिरी चिंगारी थी, आखिरी ज्वाला थी, आखिरी लड़ाई थी। और ये एक बहुत ही निर्णायक समय था कि इस क्रांति का अंत हो जाएगा या ये क्रांति चलती रहेगी और भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो आज के दिन जो लड़ाई लड़ी गई, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो लड़ाई लड़ी गई यानी 16 जून 1858 को, इस लड़ाई में भारत के लोग यानी हम हिंदुस्तानी हार गए थे और 1857 की क्रांति का दिया बुझ गया था। इस लड़ाई में एक तरफ थे तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी तरफ थे अंग्रेज़ गोरे, और उनको उनके जनरल थे

ह्यूम्यूज रोज। इस लड़ाई में हिंदुस्तानी हार गए और अंग्रेजों ने इसे गदर करार दिया और हिंदुस्तानियों को कहा था बागी। 19 जून को ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी और इसके बाद 1857 की क्रांति का दमन हो गया था। तो चलिए, भारत हमको जान से प्यारा के इस स्लॉट में आज हम और भी कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और आज हमारा टाइटल है भारत हमको जान से प्यारा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 16 जून 1858 यानी आज ही के दिन एक बहुत अहम लड़ाई लड़ी गई थी, मोरार की लड़ाई जिसे नाम दिया गया था, और क्रांति की ज्वाला इसके बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने उसका दमन कर दिया था, और 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। तो हमारे लिसनर्स इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और आपके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं देश की इस 1857 की क्रांति को लेकर, और बहुत सारे लिसनर्स गानों की भी तारीफ़ कर रहे हैं। हमारी साथी आरजे संतोष शुक्ला भी हमारा शो सुन रही है, तो हम दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और अगला गीत पेश करने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
5: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
6: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:38 और 38 सेकंड हो चुके हैं, और प्यारे प्यारे गीतों की वजह से शायद मैं भी थोड़ा सा बहक गया हूँ और मेरी जबान लड़खड़ा रही है। एनीवे, कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और एक खास घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस स्लॉट में। आज हम सभी के पास न्यूज़ का, जो भी हम न्यूज़ सुनना चाहते हैं, समाचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे पास उसके बहुत सारे साधन हैं। जैसे सुबह सुबह हमारे घर पर अखबार भी आ जाता है, हम अखबार के ज़रिए हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, समाचार मिलते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किस देश के नेता ने क्या कहा, क्या हुआ, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी जानकारी हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती रहती है। और न्यूज़ चैनल्स भी रहते हैं जो आजकल इतनी सारी चीज़ें लाइव दिखाते हैं कि मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ तो न्यूज़ चैनल वाले अपना कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं और लाइव दिखाते हैं कि देखो किस तरह से ट्रेन पलट गई या कोई हादसा हो गया या बिल्डिंग में आग लग गई और क्या हो रहा है वहाँ पर, जो लोग रहते हैं उनसे भी लाइव बातचीत टीवी के ज़रिए हमें सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। यानी ये न्यूज़ का एक नया एक हमारे सामने माहौल है जिस तरह से हमें न्यूज़ पता चलती है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था, याद कीजिए आज से काफ़ी समय पहले, जब इतने सारे न्यूज़ चैनल्स नहीं थे और हम दूरदर्शन पर न्यूज़ सुनते थे और वो न्यूज़ भी दिन में 3 या 4 बार आती थी मुश्किल से, और कितनी मतलब सादगी के साथ और गंभीरता के साथ न्यूज़ सुनाई जाती थी और न्यूज़ के बीच में कुछ छोटी मोटी क्लिपिंग्स दिखा दी जाती थी या कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती थी। लेकिन आज टीवी ऑन करते ही 24 घंटे आप न्यूज़ लाइव देख सकते हैं, कहीं पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा खेल न्यूज़ के माध्यम से दिखा दिया जाता है। किसी देश में कोई बहुत बड़ी इवेंट हो रही है तो उसे पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक खास जानकारी मैं दूंगा अगले लिंक में। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। रफ़ी साहब की आवाज़ है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ रविन और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। तो बात कर रहा था मैं कि आज न्यूज़ के हमारे पास कितने साधन हैं, और अगर आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो आप देखेंगे कि महिलाएं, जो महिलाएं न्यूज़ रीडर्स हैं या एंकर्स हैं, वो कितनी सारी सफल हैं, कितनी कामयाब हैं

और कितनी ऑथेंटिक हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बात है 1933 की और देश था इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड जैसे देश में ऐसी सिचुएशन थी। तब रेडियो का ज़माना था और रेडियो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था और रेडियो पर, दोस्तों रेडियो पर जो समाचार आते थे, उद्घोषणाएं आती थी, वो सिर्फ पुरुषों की आवाज़ में ही हुआ करती थी। ऐसे में एक महिला शीला बोरेट ने एक नई शुरुआत की। वो बीबीसी की जो राष्ट्रीय सेवा है उसकी पहली महिला उद्घोषिका बनी और 20 जून 1905 को, जी हाँ 20 जून 1905 को हैरो में जन्मी शीला, जो पहले एक एक्ट्रेस थी, एक्टिंग किया करती थी, वो रेडियो में आई और उनकी आवाज़ काफ़ी गंभीर थी और प्रभावशाली थी। और उन्होंने पहली बार न्यूज़ पढ़ी। जी हाँ, इंग्लैंड में 1933 में, गौर से सुनिएगा, उन्होंने पहली बार न्यूज़ पढ़ी, यानी एक महिला ने समाचार पढ़कर रेडियो पर सुनाए। सोचिए क्या हुआ होगा। इसका प्रसारण होते ही बहुत सारी शिकायतें बीबीसी के पास पहुंची। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक महिला न्यूज़ रीडर की आवाज़ में उन्हें समाचार सुनकर कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ पुरुष ही समाचार पढ़ा करते थे और पहली बार किसी महिला की आवाज़ में उन्होंने समाचार सुने हैं तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा और इसलिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। सुनकर हैरानी होती है। मात्र 3 महीने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। आज ये बात सुनकर किसी को भी अजीब लग सकती है, खराब लग सकती है, निराशा हो सकती है, लेकिन उन्हें उनके काम से हटा दिया गया। लेकिन शीला बारोट ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि एक पद छिन सकता है, एक मौका छिन सकता है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरा टैलेंट, मेरी प्रतिभा को मुझसे छीन ले। और वो बीबीसी से जुड़ी रही और बीबीसी के लिए काम करती रही और धीरे धीरे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि एक महिला कुछ भी कर सकती है। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको मैं पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से मनाना चाहता हूं। और हमारे लिसनर ग्रांट रोड से फिरोज सिंह पुरिया जी हमारे साथ हैं और बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार उन्होंने भेजा है हम सभी के लिए, एफएम रेनबो के लिए और सभी आरजीज के लिए। तो चलिए अगला गीत, सर आपके लिए। वैसे इन्हें मैं हमेशा प्यार से बापू भी कहता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, 10:54 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और इसी के साथ मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। और कार्यक्रम का आखिरी गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत आपकी नज़र करता हूँ, गौर से सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत बोल हैं और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की। इसी के साथ मैं रविन आपसे विदा लेता हूँ, हैव ए नाइस डे। और हमारी साथी आरजे सोनाली स्टूडियो में आ चुकी हैं और स्टूडियो पूरी तरह से चमक रहा है, एक तरह से आपको एंटरटेन करने के लिए बेकरार हैं। तो सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM Rainbow। 11:22 हुए, समय है जानने के इस घंटे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और अंत में क्रिकेट में दाम्बुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने 265 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाकर मैच बराबरी पर खत्म किया। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 ही रन बना पाया। इसी के साथ समाचार का यंग यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM Rainbow।

11:02 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है ब्रेक फ्री मंगलवार की सुबह। मैं सोनाली आपके साथ और वापस काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात। और गर्मी के मौसम में सच कहूँ तो पसीने से तरबतर जैसे ही स्टूडियो में पहुँची तो यहाँ की कहते ना ठंडक आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल कर देती है। और ऐसे में अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसने कहीं फूलों का गजरा या कहीं फूल रखे हुए हो जो मोगरे के हो या वो चंपा के फ्लावर्स कहते, तो उस गर्मी में जब वो खुशबू आप तक पहुंचती है ना तो इतनी खुशी का एहसास देती है कि ऐसा लगता है जैसे सारा माहौल सुगंधित और खुशबूमय हो गया है। आई एम श्योर अगर आपके भी आसपास कहीं कोई गजरा या मोगरा या फूलों का कहीं हो कहीं आउटलेट या शॉप, तो थोड़े से फूल अगर आप अपने घर में ला के भी रख दें तो इस गर्मी के मौसम में वो खुशबू आपको ज़रूर प्रसन्न कर सकती है। 11:03, चलिए प्रोग्राम ब्रेक फी का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज मैं आई स्टूडियो में और मुझे बहुत अच्छी खुशबू से मेरा स्वागत हुआ, तो सोचा आपके साथ भी ये थॉट शेयर कर देती हूँ। सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
6: ग्यारह बजकर 16 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है ब्रेक फ्री और काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया है। तो विजेंद्र घटोल अकोला से मैसेज किया है, प्रमोद चंचालकर ने मैसेज किया है, प्रदीप अनंत कृष्णन, संजय दर्शन जी, मुकुंद कुलकर्णी पुणे से, शुभलक्ष्मी मस्तकार, धनंजय का न्यू मुंबई से, प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया है, अंजू का अंधेरी ईस्ट से, पंकज मोहट फिरोसिगनपुरिया, कुछ मैसेज आ रहे हैं और वाकई ये सारे ही मैसेज बहुत ही ज़्यादा खुश कर देते हैं, क्योंकि ये सभी लिसनर्स हैं जिनके साथ हम सालों से कनेक्टेड है। अगर आपने भी अभी अभी कहीं से रेडियो ट्यून इन किया हुआ है या आप DTH से सुन रहे हैं, कहाँ से, किस ऐप से, मतलब ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और कहते हैं ना कि अभी हमने एक गाना सुना कि पहली बार मोहब्बत की है और आखिरी बार मोहब्बत की है, तो सच में कई बार ऐसा होता है कि जो पहली मोहब्बत होती है वही आखिरी मोहब्बत बन जाती है। हालाँकि ज़िंदगी में कई बार ऐसे वाक़े होते हैं कि कई सारी चीज़ें पसंद आती है, लेकिन कुछ एक लाइफ

में ज़रूर होता है, जो कांस्टेंट होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती है, और वो जो एक कॉन्स्टेंट रहता है आमतौर पर, वो होता है आपका अपना सपना कि मुझे कुछ ऐसा करना है, या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ इस लेवल तक जाना चाहता हूँ। और वो जो सपना होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में जगाए रखने में बड़ा काम करता है। इसी बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अगला गाना, क्योंकि गानों का प्रोग्राम है भाई, ब्रेक फ्री है, तो बिल्कुल भी म्यूज़िक की तरफ ब्रेक नहीं लगाते हैं हम। और चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। मैं सोनाली आपके साथ हूँ और साथ रहूँगी पूरे 2 बजे तक। बने रहिएगा।

0: पियानो की आखिरी बीट भी मिस करने का मन नहीं करता। एजेंट विनोद फिल्म का गाना हंसिका अय्यर और अरिजीत सिंह की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए बोल और प्रीतम ने कंपोज किया हुआ ये म्यूज़िक। और कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। बहुत ही खूबसूरत सी और एक कहते हैं ना अपने आप में कंप्लीट कंटेंटेड लाइन है ये। और जब हम सपनों की बात करते हैं ना तो हर एक इंसान का अपना सपना भी तो अलग होता है और वो सपना एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि या तो हम अपने आप से वो सपना डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है मेरी ज़िंदगी में, या फिर हम आमतौर पे किसी न किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं और उसके जैसे या उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। और एक सपना भी होता है कि जब मैं उनके जैसा या उस इंसान के जैसा थोड़ा भी बन पाऊँ अगर, तो मेरी ज़िंदगी का कहते हैं ना कि एक फुलफिलमेंट आ जाएगा लाइफ में। तो जब हम बात करते हैं ना कि किसी जैसा बनना या अपने आप को एक मकाम तक लेकर जाना, तो इसकी शुरुआत है ना सच कहूँ तो एक सोच के साथ होती है और वो जो सोच होती है ना वो बहुत ही खास होती है। हालांकि हम इसके बारे में और भी थोड़ी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले बता दूँ कि किसने कहाँ से हमें कनेक्ट किया हुआ है। तो पंकज बावनकर का मैसेज आया है जो वाइजैग विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है। बहुत ही भाई दूर से आप हमारे साथ कनेक्टेड है, सो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में विजेंद्र घटोल अकोला से कनेक्टेड है। देन सुरेश जी और अविनाश ये वाडवन टिगरेपाड़ा से कनेक्टेड है। अजय साखरे जी इंदौर से कनेक्टेड है। और ये जो कुछ बातें होती है ना, इंदौर क्योंकि मेरा भी शहर है तो बहुत ही एक बिलोंगिंगनेस लगती है और वो एक सपना भी होता है। जैसे जब मैं इंदौर में रहा करती थी तब ऐसा लगता था कि जब मैं और इंदौर रेडियो स्टेशन से जब आगे बढ़ूँगी तो और भी ज़्यादा होगा। आज मुंबई रेडियो स्टेशन से कनेक्टेड हूँ इंदौर के लोगों के साथ में। हर एक शहर की अपनी अपनी खास बात होती है और हर एक इंसान का अपना अपना एक सपना भी होता है। चलिए इन सभी बातों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेंगे और कमर्शियल ब्रेक के पहले एक छोटा सा गाना सुन ले। मेरे ख्याल से बातें तो खैर होती रहेंगी, साथ साथ बता दूँ आपको कि 8657661071 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप का नंबर है। जिन्होंने शायद अभी अभी कनेक्ट किया होगा उनको मालूम नहीं होगा, उनके लिए मैंने बता दिया। लेकिन साथ में कमर्शियल ब्रेक लेने की जैसे कि मैंने बात कही थी, तो चलिए पहले कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे प्रोग्राम के साथ में। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।
1: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर

11:40 होने को है और जाने मन छोटी सी बात फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए प्ले किया, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा थे इस फिल्म में। आपने अगर ये फिल्म देखी होगी और नहीं देखी होगी तो एक्चुअली देखने जैसी मूवी है। इतनी मतलब कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना सिंपल रहता है और फिर किस तरह से उसको लोग इस्तेमाल करते हैं एंड देन किस तरह से चीज़ें बदल जाती है कुछ एक थोड़ा सा परिवर्तन लाने से अपने आप में। कुछ बातें जब हम सपनों की भी करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जो चीज़ आप चेस कर रहे होते हैं या जो चीज़ आप तलाश कर रहे होते हैं वो आपको तभी मिल पाती है जब आप कई बार, मतलब ऐसा होता है कि जब आप अपना एक ना कहते एक अपग्रेडेड सा वर्जन बनाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर है ना कंटिन्यूस चेंजेस आते ही रहते हैं। हम उस बात को हम कितना भी कहें कि नहीं ये तो वैसे के वैसे है, तो रिजिड है, ये है, वो है, लेकिन हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर अपग्रेड होता ही रहता है। और जब आप उस लेवल तक अपग्रेड हो जाते हो कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए तो वो बहुत ही इजीली मिल जाती है। और कई बार ऐसा कहते हैं ना कि जब मैंने उस चीज़ को चेस करना छोड़ दिया तब वो चीज़ मुझ तक आ गई। सो इट्स नॉट प्रोबेबली नॉट लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को बदल लेते हैं तब वो सामने से चीज़ आप तक पहुँच ही जाती है। दो पुराने गाने में और आपके लिए प्ले करूंगी, क्योंकि है ना सच कहूँ तो कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं और वो गाने हमेशा सुनने का मन करता है। तो मैंने गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता प्ले किया था। अगला जो गाना प्ले कर रही हूँ मैं मिथुन दा की फिल्म का है, तराना फिल्म का। आई एम श्योर अगर ये भी, क्योंकि मुझे तो खैर हर तरह की फिल्में बहुत पसंद है, मैं आज भी पुरानी फिल्में भी देखती हूँ, नई फिल्में भी देखती हूँ, और जो लोग म्यूज़िक को पसंद करते हैं वो भी आई एम श्योर देखते ही होंगे। तो ये गाना प्ले करती हूँ मैं आप सभी के लिए और फिर लौट कर आएंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ और गानों के साथ में, क्योंकि प्रोग्राम है ब्रेक फ्री। मैं हूँ सोनाली और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी अंकित, आप बिल्कुल डिसअपेयर या इनविजिबल नहीं हो गए हैं, आप बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने ही हैं। सो अंकित भी हमें सुन रहे हैं। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
4: चलिए कुछ पुराने गानों के बाद अब नए गानों की तरफ फिर से रुक करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा कुछ पुराने गानों को रिविजिट करने से है ना बहुत सारी बातें और वो एक सिंप्लिसिटी कई बार म्यूज़िक की भी ध्यान आ जाती है, क्योंकि तराना मूवी मिथुन दा के उस ज़माने की पिक्चर है जिस समय उन्होंने सुरक्षा वगैरह पहले सुरक्षा के बाद उनका एक वो डिस्को डांसर और एकदम वैसा वाला रूप सामने आ गया था, लेकिन ये जो मूवी थी इट वॉज़ वेरी सिंपल मूवी। सो कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी में भी एक मज़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूं, प्रोग्राम है ब्रेक फ्री। यस, आई एम श्योर ये गाना का जब बीट बजता है तो ध्यान आ ही जाता है कौन सा है गाना, तो सुनिए, एंजॉय कीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ।

11:56 हो चुके हैं और ब्रेक फ्री प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 12 बजे होंगे समाचार और समाचारों के उस पार होगा प्रोग्राम म्यूजिक कैफे। आपका साथ हमारे साथ बना रहे इसी बात के साथ मैं अगला गाना प्ले कर रही हूँ और 12 बजे के बाद भी आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचते रहेंगे। मैं नंबर बता देती हूँ 8657661071। और डॉली की डोली इस फिल्म का ये ब्यूटिफुल सा मेलोडियस सा गाना इस आर का आखिरी गाना है। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। 12:43 हुए हैं समय जानने के इस घंटे के समाचार। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का दर बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 13.5 रुपये प्रति लीटर था। वही विमान ईंधन के निर्यात पर SAED बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 9.5 रुपये प्रति लीटर था। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भ्रामक जानकारी देकर वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सोमवार को सख्त मानक जारी किए। साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों के आक्रामक बिक्री को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन ढांचे को अपनाने से मना किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े मध्यस्थ भी दायरे में आएंगे। और अंत में महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमसियामी ने भारत के महत्वपूर्ण गोल दागे। इसी के साथ समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। अगला प्रोग्राम है म्यूजिक कैफे।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

12:17 हो चुके हैं और आजकल जब बात सोशल मीडिया पे होती है तो बात चुपके चुपके नहीं, काफ़ी ज़ोरदार होती है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, क्योंकि सोशल नाम ही है उसके अंदर, तो वो जब बातें फैलती है तो सभी की नज़र में आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कौन से दिन हमने अपनी स्टोरी को या अपने कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंटेंट को देख सकें। क्योंकि आमतौर पर जब हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते होते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य ही वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें या लाइक करें, कमेंट करें। तो इस बारे में कुछ जो रिसर्च की गई है, हालांकि ये जो कहते हैं एक प्रमाणित बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग इस बात के पीछे रहते हैं, लेकिन जब कुछ बातें ढूंढी जाती है, निकल के आती है, तो ऐसा पता चला है कि सोमवार के बाद, क्योंकि सोमवार तो मंडे ब्लूज तो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कि संडे के बाद जब सोमवार को काम शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्यों काम शुरू हो गया, लेकिन मंगलवार का दिन ऐसा होता है कि अगर

मंगलवार को कुछ अपनी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पोस्ट को ज़्यादा लोग देखें या ज़्यादा लोग शेयर करें या ज़्यादा लोग कमेंट करें, क्योंकि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, मतलब जब गुरुवार शुक्रवार आता है तो लोगों के अंदर थोड़ा सा वीकेंड वाइब वाला आने लग जाता है और काम ख़त्म करने के पीछे लोगों का जो इंटेंशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको भी क्या लगता है, जब मतलब आई एम श्योर आप सभी लोग सोशल मीडिया पर थोड़े ही सही एक्टिव होंगे, कुछ लोग ज़्यादा भी एक्टिव हो सकते हैं, तो उनमें से जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालते हैं, बताइएगा कि कौन से दिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से ज़्यादा लोग देखते होंगे, आपकी नज़र में क्या बात हो सकती है। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे कि आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। साथ साथ बता दूं कि ठीक 12:30 बजे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होगा, NCERT उमंग का जो प्रोग्राम होगा वो 12:30 बजे से होगा, 12:30 से 1 बजे तक। तो 1 बजे होंगे समाचार और समाचारों के उस पार होगा प्रोग्राम जो कि हम और आप सुनते हैं हिट एंड हॉट, जिसमें आपकी पसंद के गाने होंगे। तो ये तो कुछ जानकारी थी जो हम आने वाले 1.5 घंटे तक जो रहने वाली है आपके साथ। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम लेकिन आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उस कमर्शियल ब्रेक के उस पार आगे बढ़ाएंगे अपने प्रोग्राम को और बने रहेंगे प्रोग्राम म्यूजिक कैफे के साथ। सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
5: हर घर

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियां। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा

0: और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह यह तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।

0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।

0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉनसे, उस दिन क्या 100 थे जो अब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
1: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
2: Only 4.
1: मेरी तरफ देखो।
2: So, only 4. Oh, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
2: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ, हाँ?
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
1: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉनसी।
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं।

0: आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
0: हाँ,
3: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ, हाँ।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
0: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी,

0: अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सु?
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

रेनबो, और अपनी पसंदीदा गानों के साथ रेडी रहिएगा। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप अपने रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाएं। 1 बजे समाचार, समाचारों के बाद हिट एंड हॉट। स्टे ट्यून्ड।

0: प्रकाश वाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: हाँ जी बिल्कुल म्यूजिकली योर्स। और 1:05 हो चुके हैं, प्रोग्राम हिट एंड हॉट और मैं और आप साथ साथ। मौसम बाहर वैसे ही काफ़ी हॉट है, तो चलिए कुछ हिट गाने सुन लिए जाए ताकि अपने इस मौसम की गर्मी को थोड़ा सा मेलेडी के साथ कम किया जा सके। आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंच रही है, तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस ब्यूटीफुल से गाने के साथ। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाइए, अपने पसंद के गाने मुझ तक पहुंचाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो आपकी पसंद के गाने मुझ तक पहुंचेंगे और बस कुछ ही देर में वो आपके रेडियो के माध्यम से आप तक भी पहुंच जाएंगे। सुनते रहिएगा

प्यार झुकता नहीं मूवी का ये गाना भी आपके लिए प्ले किया, और मिथुन दा का आज जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देते हुए ये गाना, मतलब उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म का गाना है। और आई डोंट नो कितने लोगों ने मूवी देखी होगी, इस मूवी में पद्मिनी कोल्हापुरे जी और मिथुन दा थे, और साथ ही साथ में वो एक झाड़ पे, मतलब पेड़ पे हार्ट का शेप बनाते हैं और वो उनका प्यार का मेमोरी रहता है। और इस मूवी के बाद में न जाने कितने प्यार भरे दिलों ने वो अपने जो जो पूरे झाड़ थे उनके ऊपर हार्ट शेप बनाया, और ये कहते ना एक मूवी के वजह से कह लीजिए एक ट्रेंड शुरू हो गया था। प्यार झुकता नहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट मूवी रही है, तो जन्मदिन की बधाइयों के साथ में ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं मिथुन दा को। आगे बढ़ते हैं और आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंच रही है, चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल सा ट्रैक, वीर ज़ारा फिल्म का है। थोड़ा स्लो गाना है लेकिन इतना ज़्यादा मधुर सा गाना है ये कि अपने साथ ये मेलोडी आपको अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। कुछ पुराने गाने भी मुझ तक पहुंच रहे हैं, बीच बीच में इसे ज़रूर प्ले करती रहूँगी, और बहुत ही खूबसूरत से गाने हैं जो आपने मुझ तक भेजे हैं, कुछ गाने जो अपने एक अलग ही एरा की याद दिलाते हैं, ऐसे कुछ गाने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सभी गानों को प्ले कर सकूं, लेकिन हाल फिलहाल ये गाना आप सबके लिए है।

1:47 हो रहे हैं और हमारे इस वो हिट एंड हॉट प्रोग्राम को करीब करीब वाइंड अप करने का टाइम आ गया है. नाम बता दूँ जितने लोगों के मैसेजेस आए या जिन्होंने प्रोग्राम अच्छा लगा उसकी जानकारी हम तक पहुँचाए. सुनील स्वप्नाली जोशी रत्नागिरी से, शुभलक्ष्मी मस्तकार, विजेंद्र घटोल अकोला से, प्रणव शिंदे फिरोज सिगनपुरिया, पंकज मोहोड़, मुकेश कश्यप ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, संजय दर्शन, साथ ही साथ में मंगेश जोशी रोहा से इन्होंने मैसेज किया, शुभदा का मैसेज आया था, चेतन कुमार मानपुर गया बिहार से, उसके अलावा श्रुति का दादर से मैसेज आया था, अरविंद कुलकर्णी जी का मैसेज आया, हितेंद्र दास, अजय साखरे इंदौर, अरुणा का खार से, अभिजीत गवानकर का मैसेज आया, दिग्दर्शन और कविता का मैसेज आया, संदीप कुमार का, देन मेहर अरोरा श्रीगंगानगर राजस्थान से, प्रमोद चंचालकर, सुरेश वैष्णव, राम प्रजापति, हाँ जी, और ये अभी भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन अब इस बात को इस धूप में निकलाना करो, इस गाने को पहले कंप्लीट करते हैं. और साथ साथ बता दूं कि आपकी दो रिक्वेस्ट और इसके बाद लाइंड अप है, तो उन दो गानों के साथ में देनी होगी आपको मुझे इजाज़त. सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो, आपका प्यार हमेशा इसी तरह मिलता रहे. धूप में निकलने से पहले, क्योंकि अभी भी कहीं बारिश हो रही है लेकिन अभी काफ़ी जगह धूप है, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो. नमस्कार.

0: whether that means delivering personalized education or providing climate advisories to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good.
1: Anki, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Evian. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.
2: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
1: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha Speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the Youth Parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said the government is committed to building next generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the ministry on a proposed Middle East-India deep water pipeline. In a statement, the ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deep water pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test NETUG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency NTA has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NETUG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
3: Earlier, the Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: The Special Investigation Team SIT constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
4: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
1: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in the opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
6: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
5: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
6: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
5: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
7: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
5: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि

0: इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आता काय झालं? अगं हो हो हो हो अशी कुठं

सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी 101.1 मेगाहर्ट्ज़ और आशुभांगी आपके साथ लव यू जिंदगी। ये जो एक समय होता है ना इस प्रोग्राम का, बस आपके लिए, अपने लिए सोचने का, अपने लिए हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए सोचने का, बस जो समय नहीं मिलता है ना पूरी दिन की भाग दौड़ में, तो वो समय निकाल कर कुछ ना कुछ सोचने के लिए देना है अपने लिए। सुबह उठते ही वैसे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मूड क्या कह रहा है, ये पता होता है ना हमें, आज मूड ही नहीं है सुबह से, ऐसा हम कहते भी हैं ना। तो कुछ लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फिटनेस का जिनको एक अपने लिए ख्याल रखना है तो करते हैं, तो कुछ सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ते हैं, और काफ़ी लोग जो है वो योग करना पसंद करते हैं। और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जो योग करना पसंद करते हैं, सिर्फ प्राणायाम भी अगर करें, और ये सब तो घर बैठे बैठे हो जाता है, कहीं बाहर जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम जब सीख रहे होते हैं ना, नहीं क्लासेस में जाकर सीखना है, तो बस क्लास छूट गई तो योग भी छूट गया, ऐसा होता है, होता है ना, अरे हमारा भी होता है ऐसा ही। तो इसीलिए तो समय देना है अपने लिए, तो अगर हम घर बैठे बैठे करें ही, खुद को पहले पुश करना है ना, ये करना पड़ता है कि नहीं नहीं ये अगर सीखा है और ये हमारे लिए अच्छा है तो हमें ये करना है। योग और प्राणायाम सुबह सुबह करो ना, ये मेरा अपना अनुभव है कि पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाती है। प्राणायाम भी अगर करो तो पूरे दिन आपको इतना ऊर्जावान लगता है, वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, आपकी चुस्ती फुर्ती जो है वो बनी रहती है। और ये कैसे होता है, ये फिर जब हम सोचते हैं तो अरे हाँ मैंने तो प्राणायाम शुरू किया है और उसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, तो अपने आप ही हम सकारात्मक सोचने लगते हैं। करके देखिए अगर नहीं किया है तो, और अगर मेरे जैसा भी हुआ है ना कि अरे कुछ दिन के बाद में छोड़ दिया, नहीं नहीं फिर शुरू करना है, तो फिर से शुरू करना है। इसीलिए तो मैंने अपना अनुभव बताया आपको प्राणायाम से क्या होता है, तो इस बात पर एक गाना होना चाहिए।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए जापानी।

0: दिशा स्कीम च्या टेली लॉ न्याय बंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदेविषयक मदतीसाठी टेली लॉ च्या 1444 या टोल फ्री नंबर वर तसेच www.tele-law.in या वेबसाइट वर माहिती मिळवू शकता.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है. पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: हर घर सूर्य घर.
3: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो.
4: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो.
3: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
4: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक.
3: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल.
4: म्यूजिकली योर्स.

सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी, 5:34 हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह से ही कुछ ठीक ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा हमें लगता रहता है, यूं ही लगता रहता है कि नहीं नहीं कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है। और कभी कभी फिर ऐसे मूड में जब होते हैं ना, तब कोई मिल जाता है, पुराने दोस्तों में से हो कोई, या चाहे कोई ऑफिस का हो, या चाहे जो भी हो, जिसकी सोच थोड़ी सी अलग है। और हमें ये जानते होते हैं कि सोच थोड़ी सी अलग है, और ये होना ज़रूरी भी है, ऐसा भी लगता है। तो ऐसा कोई अगर मिल जाए, फिर उसके साथ जो भी बातें होती हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, और अब ये तो बदल गया है, एकदम बदल गया है। मतलब कुछ देर के लिए हम सब कुछ भूलकर तरोताज़ा हो सकते हैं, और फिर लगता है कि काश मैंने वो एक काम या वो एक बात, वो एक चीज़ ज़रा दोबारा सोच कर की होती, या वो एक काम ज़रा ठीक से किया होता, लेकिन मेरा मूड ख़राब नहीं था, ऐसा था वैसा था, ऐसा हम अपने आप को जो रीजंस देते रहते हैं ना, तो ये काश जो होता है ना, दिल चाहता है कि वो लौट कर आए, काश कि ऐसा हो, ऐसा होता है ना कई बार। यही होगा आज आपको 7 से 8 के बीच में सवाल, ये हिंट दे दिया है मैंने तो, बस थोड़ा सा सोचिए। इसके बाद ये गाना तैयार है आपके लिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

0: तो फरमाना।
1: 5:50 हो चुके हैं। लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई, फिल्म रेनबो, म्यूजिकली योर्स, म्यूजिकली योर्स। ये तो है, जब जब आप सुनना चाहते हैं ये सारे गीत तो आपको ये रेनबो पर ही सुनने मिलते हैं। कुछ कहना, कुछ बोलना बहुत ज़रूरी होता है और उतना ही ज़्यादा उसे सुनना, सुनने वाला कोई हो, ये ज़रूरी होता है। होता है कि नहीं, फ़ोन पर भी जब हम बात करते हैं तो उस तरफ जो भी है वो सुन रहा है कि नहीं, इसलिए हम एटलीस्ट हाँ हाँ इतना तो रिस्पॉन्स चाहते ही है कि हमें कोई सुन रहा है। जब जब कहना है तो सुनने वाला कोई हो, ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जहाँ मैसेज भी लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है, पूरी दो पंक्तियाँ भी नहीं लिखी जाती हैं ऐसे ज़माने में, कि बैठकर कोई सुने, अपना समय दे, ये बहुत कम होता जा रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, ऐसा हो गया है। और जहाँ जहाँ ऐसा होता है ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब ये जो संवाद होता है ना आपस में, सब मिलकर जब बात करते हैं वो तो और अलग होता है, लेकिन जिस किसी को कुछ कहना है उसको सुनने वाला अगर कोई मिल जाता है, तब वो जो संवाद होता है, तब ऐसा लगता है जैसे मोगरे की कलियाँ खिली हुई हो और वो महक जो है, वो खुशबू जो है, उससे सारा आलम भर गया हो। और तब ज़रूर दिल कहता है, कहना चाहता है और बार बार कहना भी चाहेगा कि लव यू ज़िंदगी, कि कोई सुनने वाला है, इसलिए कुछ कहने का भी तो मतलब है, वरना हम जो चाहते हैं वो कहें भी किसे। तो ये जो माध्यम है संवाद, ये जो बहुत ज़रूरी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोगरे की कलियों की तरह हम बना दें, तो सोचिए ज़रा क्या हो सकता है। फिर से हम खुलकर बात करने लगे, जैसे पहले के ज़माने में होता था, एक दूसरे के घर जाकर हम मिलते थे, वो मिलना जुलना, वो बातें करना, उससे दिल भी

बिल्कुल दिल खोल कर सब बातें करते थे, तो सब कुछ दिल से जो भी है निकल जाता था, और बिल्कुल खाली खाली सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस करते, खाली खाली सा, वैसा खाली सा नहीं कि कोई नहीं है, वैसा नहीं, लेकिन एक बार बस बात कह दी है, अब वो जो बोझ रहता है ना कि कुछ कहना है लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका भी तो एक बोझ होता है, तो वो हल्का हो जाता है, तो वो जगह फिर से खाली हो जाती है कुछ नया कहने के लिए, नया सुनने के लिए, होता है कि नहीं, करके देखिए।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो। शाम के ठीक 6:15 का समय है कार्यक्रम अंदाज़। हमें शुभांगी आज आपके साथ।

कहने का अंदाज तो देखिए निदा फाजली का। ये दोनों ही गीत आपने सुने निदा फाजली के लिखे हुए, संगीतकार खयाम साहब नाखुदा फिल्म से। और ये जो कहने की बात है, दोनों में जो एक डायलॉग हो रहा था वो इतना प्यारा था। ऐसे कुछ गीत होते हैं जिनमें कोई राज कहा जा रहा हो, कोई मीठा सा राज, या कोई सीधी सादी बात, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गहरी बात हो सकती है, और वो कहने का अंदाज ही तो मायने रखता है। अब इसके बाद ये जो गीत मैंने चुना है, साहिर जी ने जो लिखा है, वो जो कहना चाहते हैं, उसके लिए तो कुछ मतलब शब्द मिलते ही नहीं है कि क्या कहें। फिर एक बार संगीतकार खयाम साहब।

क्या बात है. इसके बाद ना सचमुच मतलब कुछ कुछ मन में आए, हम कहें इसका भी ख्याल नहीं रहता है. कुछ ऐसा लिखा है.

0: साहिर साहब ने कि दाद देने के लिए भी शब्द नहीं मिलते हैं। क्या बात है, कुछ भी जो आज है अभी इसी वक्त वो कायम नहीं रहने वाला है। वक्त जो है निकलता जाता है, निकलता जाता है, अपनी रफ्तार से वो चलता रहता है, इसीलिए उस पर जो लिखा जाता है वो उस वक्त ही उसका मज़ा रहता है, उसके बाद या उससे पहले कुछ नहीं। जो अब है, अभी है, इस वक्त है, कुछ भी हम कहें, गीतकार के जो बोल होते हैं उस पर नहीं नहीं नहीं हम कुछ भी कहें, मुझे नहीं लगता कि इतना गहराई से कुछ कहने के बाद हमें उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए भी, नहीं कहना चाहिए ना। सुन रहे हैं अंदाज़े बयां 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

सुन रहे आप अंदाज़ बयां, 6:45 होने को है। अंदाज़ बयां में आज शुभांगी आपके साथ कुछ गीत सपने देकर जाते हैं, कुछ गीत उम्मीद देकर जाते हैं, कुछ सवालों के जवाब लेकर आते हैं और कुछ गीत हकीकत बयां करते हैं। इसीलिए तो अंदाज़ बयां यूं ही तो नहीं होता। गीतों में जो मज़ा है, वो जो बात है, वो आप चाहे कितना भी कहें, 5-6 पंक्तियों का अगर आप कुछ लिखें भी, तो उसमें वो गीत का मज़ा नहीं आता है। जो शायर कहता है, जो गीतकार कहता है, वो मज़ा एक डायलॉग में भी नहीं आता है। ऐसे कुछ बात है, इसीलिए हमारी फिल्मों में भी गीत हैं और गैर फिल्मी भी गीत हैं। इसके बाद सुरेश वाडकर की आवाज़ फिल्म उत्सव के लिए।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं अंदाज़ भैया, और अब इस प्रोग्राम को समेटने का समय हो चुका है। 6:58 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार, और 7:10 पर कार्यक्रम हम तुम लेकर आ जाऊंगी और आपके लिए एक सवाल भी लेकर आ जाऊंगी। वैसे उसका हिंट तो मैंने दे दिया है पहले ही, अगर आपने नहीं सुना है या आपको अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा दे दूंगी बिल्कुल। लेकिन फिलहाल हमें इंतज़ार करना है समाचार, और उसके बाद 10 मिनट के बाद हम तुम शुरू हो जाएगा। तो बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: न्यूज़ोन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम के ठीक 7:10 का समय है और ये समय कार्यक्रम हम तुम का, जिसे लेकर आई हूँ आज मैं शुभांगी आपके साथ। और आपके लिए एक सवाल भी है जिसका हिंट मैंने दे दिया था पहले ही। अभी मैं सवाल आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी बात कि आपको आज ऐसा लगता है कि काश उस समय मैंने ये किया होता। कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि अरे उस समय अगर मैंने सही फैसला लिया होता या उस समय अगर मैंने सही कदम उठाया होता तो आज ऐसा नहीं होता, या कुछ भी ऐसा कुछ फनी बात भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस बात ही हुई हो, लेकिन हमारे मन में ये अक्सर आता रहता है ना कि अरे काश थोड़ा रुके होते, काश ये बात कही होती, काश की डिग्री के बजाय ये किया होता, या काश ये नहीं किया होता। ऐसा भी तो होता है, तो हमें बताइए ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी क्या बात थी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे अपना जवाब भेजना है।

आप सुन रहे कार्यक्रम हम तो नेक्स्ट 7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर म्यूजिकली योर्स। और आज आपके लिए हम तो मैंने सवाल पूछा है और जवाब आने लगे हैं। सवाल जरा एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि ऐसी कोई बात कि जो आपको लगे कि काश उस वक्त ऐसा मैंने किया होता, या काश उस वक्त ये बात कही होती, या काश मैं समय पर निकल चुकी होती तो वो ट्रेन नहीं छूटती। या कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास टिकट होता है, रिजर्वेशन होता है, और हम लेट हो जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, तो समझ में नहीं आता, नज़रों के सामने से ट्रेन निकलती जा रही है, कुछ ना कुछ हो जाता है और हम लेट हो जाते हैं। तो काश हमने लेट ना किया होता, कि जो भी हुआ होगा, कि काश ये ना हुआ होता तो लेट ना हुआ होता, ऐसा जो भी चलता रहता है ना, कि ऐसी कोई बात जो आपको आज लगता है कि काश। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: रहिए 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: सात बजकर 30 मिनट का समय, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, और मैंने जो आपसे सवाल पूछा है उसके जवाब जो आए हैं उनमें से कुछ जवाब मैं अभी आपको बता दूं। अरविंद कुलकर्णी जी कहते हैं कि वो टीचर बनना चाहते थे, बनते बनते रह गए, बहुत चाहता लेकिन आज भी ये अफसोस होता है कि काश ये हुआ होता। पंकज मोहड़ कहते हैं इनका जो एक काश है ना वो सुनने लायक है। पंकज जी कहते हैं कि उनके पिताजी जब उनसे कह रहे थे शादी के लिए तो इन्होंने बात नहीं मानी और आज भी उनको अफसोस है कि काश पिताजी जब कह रहे थे तब बात मानी होती। धनंजय कहते हैं कि इनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई है और आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि काश पढ़ाई जितना चाहते थे उतना वो पूरी कर पाते। पढ़ाई के बारे में तो बहुत ऐसे लोगों को ऐसा लगता है, हम कई बार सुनते हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत चल रही होती है, आप कहीं सफ़र पर होते हैं तब भी आपको सुनने मिलता है, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो कोई ना कोई यह कहता हुआ आपको सुनाई देता ही है कि काश उस वक्त मुझे जितना पढ़ना था उतना हो पाता लेकिन ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है और पढ़ाई छूट जाती है बीच में ही, जितना हम चाहते हैं उतना पढ़ नहीं पाते। ये तो बहुत से लोगों के साथ होता रहा है, होता है। तो धनंजय जी आपको भी ऐसा लगता है अपने लिए, और भी बहुत सारे जवाब हैं मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले ये गाना हो जाए। वैसे एक बार फिर दोहरा दूं कि क्या ऐसी कोई बात हुई है जो आज सोचकर आपको ऐसा लगता है कि काश उस वक्त ये ऐसा हुआ होता या ऐसा नहीं हुआ होता, या काश उस वक्त मैंने ये किया होता, मैंने ये बात कही होती या नहीं कही होती, ऐसा जो भी आपके दिल में है, कोई मज़ेदार बात भी हो सकती है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, इस पर आपको अपना जवाब भेजना है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो पर। म्यूजिकली योर शुभांगी आज आपके साथ, और मैंने जो आपसे सवाल पूछा है उसके जो जवाब आ रहे हैं कुछ मजेदार है, जो भी है इंटरेस्टिंग। विनायक कहते हैं कि खोए हुए प्यार पर उन्हें आज भी अफसोस है, काश कि वो सफल हो चुका होता। महेश बोहरा कहते हैं कि उन्होंने जो एक मोटरसाइकिल खरीदी थी कुछ साल पहले, और उनका ऐसा मानना था कि वो उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उन्होंने उसकी जगह नई ले ली, और उसके बाद उन्हें ये हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि काश वो पहली वाली मोटरसाइकिल जो थी वो नहीं निकाली होती, उसी को रखा होता तो बहुत अच्छा हुआ होता। और राकेश माथुर कहते हैं कि 10th के बाद उन्होंने मैथ्स लिया था, चॉइस था उन्हें सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैथ्स लिया था, और उनकी ड्राइंग बड़ी ख़राब थी तो बायोलॉजी को उन्होंने अवॉइड करना चाहा, तो मैथ्स ले लिया और इंजीनियर बने, लेकिन आज भी उन्हें ये अफसोस है, ऐसा लगता है कि काश

बायोलॉजी लिया होता तो मैं डॉक्टर बन चुका होता, और आज जितने वो सफल है उससे भी ज्यादा सफल हुए होते, ऐसा उन्हें लगता है। राकेश जी, डॉक्टर बनना चाहते थे आप? कोई बात नहीं, ऐसा कई कई लोगों को लगता है, काफी सारे लोग ऐसे, मैं भी हूँ। इसके बाद देखिए, समय हमारे हाथों से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। काश, मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं घड़ी को रोक देती। चलिए, सुन रहे हैं हम तुम, और इसके बाद गाने भी तो आपका इंतजार कर रहे हैं, और आपको बताना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। ऐसी कौन सी बात है या कोई ऐसी मज़ेदार बात है जिसको आज भी आपको सोचकर ऐसा लगता है कि काश उस वक्त ऐसा हुआ होता या ऐसा नहीं हुआ होता।

और अब यहाँ से इजाजत लेने का समय हो चुका है, इस कार्यक्रम को समेटने का समय हो चुका है। शुभागी चाहेगी आपसे इजाजत, ठीक 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रॉक विद जॉक। मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ अगले हफ्ते मंगलवार को इसी कार्यक्रम में, बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जवाब भेजे, इतने सारे आपने जो इंटरेस्टिंग बिल्कुल तो आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हमारे सभी श्रोताओं का शुक्रिया जिनके नाम शामिल करना पॉसिबल कभी होता है कभी नहीं होता है सभी के नाम लेना, लेकिन तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया। शुभांगी चाहेगी यहीं पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए।

0: और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be

0: library, which we are doing it as part of our National Film Heritage Mission. Then we have a very special Marathi film package. You know, this has been curated by the Film City in Mumbai. We have this year AI film hackathon. You know, artificial intelligence as a tool has really come up, and we want to explore that. So that's why we are organizing a hackathon of AI films. So these are, really interesting lineup of films as a part of this festival.
1: We now have with us participant of the national competition documentary Threads of Time, the story of Petni, which is a documentary in Hindi and Marathi. And right now I have with us the director, Shipra Anil Balani.
2: This is basically, we got this documentary from West Zone Culture Center. It is for Culture Ministry, and they wanted to do something in Maharashtra tradition. And this particular Paithani sari, it's a legendary cloth of Maharashtra from ages, like from 1,000 years. Iska jo hai, jo aura hai aur jo pride hai, wo khatam nahi hua hai. Ye Maharashtra ki atma hai, uska atma samman है. तो जब हमने ये उनको प्रेजेंट किया इसका कॉन्सेप्ट, तो उन्हें बहुत पसंद आया, और फिर हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई और हमने फिर उसको बनाया और आज हम यहाँ खड़े हैं.
1: नाउ वी हैव विद अस द लीड एक्ट्रेस गरिमा शंकर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री गोइंग सोलो.
3: एक्चुअली मेरे दो दोस्त शारिब और विकास मेरे घर पे थे, और वो हमारे घर स्टे कर रहे थे. शारिब स्टे कर रहा था, और उसने देखा कि सुबह 4 बजे कुछ नॉइज़ हो रहा है, तो वो बाहर निकल के आया. तब उसने देखा सुबह 4 बजे मैं चेन साफ कर रही हूँ, साइकिलिंग के लिए रेडी हो रही हूँ, वो सब कर रही हूँ. तो वो थोड़ा सरप्राइज हुआ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ मैं एक ग्लास पानी भी खुद से नहीं लेती हूँ. तो उसको लगा सुबह 4 बजे वॉट आर यू डूइंग. आई सेड आई एम गोइंग फॉर माई साइकिलिंग. वो कुछ दिन हमारे साथ रहा, एंड उसने देखा मैं एवरी मॉर्निंग, बी एट बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, मैं सुबह 4 o'clock निकल जाती थी, और उस समय विंटर्स का टाइम था. तो वो ही वॉज वेरी सरप्राइज. उसने बोला ये तो बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं रहा है कि मैं बचपन से वैसे रही हूँ. इट्स टोटली आउट ऑफ द ब्लू दैट आई स्टार्टेड डूइंग साइकिलिंग. तो उसने बोला इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. एक ऐसी लड़की जो इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, इतने ऐसे बैकग्राउंड से आ रही थी जिसमें वो ज़्यादा काम नहीं करती थी, एक लैविश लाइफस्टाइल लीड कर रही है, वो पर्सन रोड पे जब आ रहा है, और रोड पे आप हुज हु नहीं होते हो, यू आर विथ योर साइकिल, सब बराबर होते हैं रोड पे. तो देन ही वॉज लाइक ये तो इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इस पर मैं मूवी बनाऊंगा. मुझे लगा कि ये बात आई गई, लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ ये इंस्पिरेशनल है और इस पर कुछ करना चाहिए, बट वहाँ से आज तक दिस हैज़ बीन 4 years सिंस देन, एंड आई एम सरप्राइज कि उसने इस ड्रीम को, उसने और विकास ने मिल करके सच किया, अलॉन्ग विद अमेजिंग क्रू मेम्बर्स दैट दे वर लाइक. या
1: वी नाउ हैव विद अस Mr. Ujjwal Nirgudkar, a technical advisor for India's National Film Heritage Mission and a chemical engineer by training. He is a member of the Academy of Motion Picture Arts Sciences, joining the class of 2017. He is the first Indian to join the Academy as a member at large, having worked in the film industry for 36 years, and he is now on the jury panel for the Oscar Awards.
4: I'm nice to be here at the MIF, and today I was on the panel to discuss about the potential of AI in our film industry, and it was really interesting to talk to on this subject, because this is a new evolving technology and there are a lot of applications in the film industry. Particularly this festival is for young filmmaker, because MIF is the place where they do their first production or enter their first entry into either short film or documentary or animation. So at this stage, if they come to know about the new technologies which are being available in the world and also in India, it will definitely help them. People have many wrong notions about AI. The first thing people talk when we talk about AI is that it will take away my job. Whenever any technology changes, like Earlier we changed from film to digital, and there are so many things evolving in the film industry for last more than 100 years. But that doesn't mean your jobs will go.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्य

मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में, एक ऐसा कार्यक्रम जहां अल्फाज दिल से निकलते हैं और सीधा दिल तक पहुंचते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर गजलों की उस खूबसूरत दुनिया में सफर करेंगे जहां मोहब्बत है, यादें हैं, एहसास है और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं। गजल केवल शायरी नहीं बल्कि दिल की आवाज है। कभी ये मुस्कुराने की वजह बनती है तो कभी बीते हुए लम्हों की याद दिला जाती है। गजल के हर शेर में कहानी छिपी होती है और हर कहानी में एक एहसास। तो आइए, इस महफिल का आगाज हम कर चुके हैं और इस कारवां को हम और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बेहतर गीत गजल। बस आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, प्रोग्राम रंगे महफिल खास आपके लिए।

वाह क्या खूबसूरत अंदाज था। गजल की यही तो खासियत है कि कुछ ही शब्दों में वे दिल की पूरी दास्तान कह जाती है। जिंदगी के भाग दौड़ में हम अक्सर अपने जज्बातों को शब्द नहीं दे पाते, लेकिन गजल वही अनकहे एहसास हमारे सामने रख देती है। कभी किसी की याद, कभी किसी का इंतजार और कभी किसी की मुस्कान, सब कुछ गजलों में बड़ी नजाकत से समाया होता है। और कहा भी गया है, कुछ ऐसे एहसास होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और गजल उन्हीं एहसासों की जुबान बन जाती है। तो बस गजलों का ये दौर अब शुरू हो चुका है। एक से बढ़कर एक गजलें रंगे महफिल प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं।

और दोस्तों अब बात करते हैं, हम उनका जिक्र करते हैं और आप उन्हें बहुत ही अच्छे से उनसे रूबरू हो जाएंगे। अब जिक्र उस शायर का जिसकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है, तन्हाई की खामोशी भी है और जिंदगी की गहरी सच्चाइयां भी। हम बात कर रहे हैं शहरयार साहब की। उनका असली नाम अखलाक मोहम्मद खान था, लेकिन अदबी दुनिया उन्हें शहरयार के नाम से जानती है। शहरयार की गजलों में अल्फाज की सादगी और एहसासों की गहराई देखने को मिलती है। उन्होंने सिर्फ किताबों तक ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी अपनी शायरी का जादू बिखेरा। उमराव जॉन फिल्म के गीत दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, और ये क्या जगह है दोस्तों, आज भी अदब और संगीत के चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी शायरी हमें सिखाती है कि खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि शहरयार का कलम आज भी उतना ही ताज़ा और असरदार लगता है जितना अपने दौर में था। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और आगे बढ़ते हुए यही कहना चाहूंगी, इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ आइए सुनते हैं शहरयार साहब की एक दिलकश गजल, जिसे सुनकर आप भी हमारे साथ मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और आज शहरयार साहब के जन्मदिवस पर ये बहुत ही सुंदर सी गजल आपके लिए, उन्हें याद करते हुए आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत और मूवी है उमराव जान, और गाया है आशा भोसले ने, और बहुत ही सुंदर आवाज़, साथ ही बहुत ही खूबसूरत लिखा है शहरयार साहब ने, और यही आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे आपके समक्ष हम यही रख सकते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बातें आगे बढ़ती रहती हैं, चीज़ें जज्बात आगे बढ़ते रहते हैं, और बहुत कुछ हम सभी कहना चाहते हैं। कहते हैं कि हर इंसान के दिल में एक छोटी सी महफिल बसती है, जहाँ कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ मीठी यादें और कुछ अनकही बातें हमेशा मौजूद रहती हैं। जब कोई गज़ल सुनाई देती है तो लगता है जैसे वही महफिल सज उठी हो, और शायद यही वजह है कि गज़लें सिर्फ सुनी नहीं जाती हैं, महसूस भी की जाती हैं। तो इसी तरह गज़लों का कारवा हमारे साथ बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

प्रोग्राम रंगे महफिल में मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। और प्रोग्राम अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है, गजलों का ये सिलसिला आपके साथ और हमारे साथ बना रहेगा। गजल का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग से है। इसमें खुशी भी है, उम्मीद भी है, तन्हाई भी है और सपनों की उड़ान भी। कभी कभी एक गजल हमें उन यादों तक ले जाती है जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ आए होते हैं, और कभी यही गजल हमें ये एहसास दिलाती है कि हर गुजरता हुआ पल अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। अगर आप भी इस समय किसी खास शख्स को याद कर रहे हैं या किसी खूबसूरत लम्हे को अपने दिल में संजोए हुए हैं, तो ये महफिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। संगीत और अल्फाज के इस सिलसिले को हम यूं ही लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। बस आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखिए।

महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन गजलों का असर अभी खत्म नहीं होता। अच्छे अल्फाज और मधुर सुर हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं। गजल हमें सिखाती है कि भावनाएं चाहे जैसी भी हो, उन्हें खूबसूरती से व्यक्त किया जा सकता है। यही वजह है कि बरसों बाद भी गजलें लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा रहती है। अब समय है महफिल को आगे बढ़ाते हुए कुछ आखिरी पेशकशों का। उम्मीद है कि आज का ये सफर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आखिरी चंद गजलें जो है वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी और इसी वादे के साथ एक खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि सभी गजलों की तरह ये गजल भी आपको पसंद आएगी।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, गजलें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। कभी एक मिसरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है, तो कभी एक शेर बरसों पुरानी यादों का दरवाजा खोल देता है। जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो साथ रहकर भी खामोश रहते हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दूर होकर भी हर पल हमारे साथ चलती हैं। गजलें इन्हीं अनकहे जज्बातों का आईना है। इसी के साथ रंगे महफिल में आज का हमारा सफर यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि गजलों की ये रात आपके दिल को सुकून और मुस्कान दे गई होगी। फिर मुलाकात होगी कुछ नई गजलों, नए एहसासों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत, और मुक्ति कहेगी जहां अल्फाज सुरों से मिल जाए, जहां अल्फाज सुरों से मिल जाए और सुर दिलों को छू जाए, वहीं से शुरू होती है रंगे महफिल। मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और ये खूबसूरत सा आखिरी ट्रैक आज के रंगे महफिल में आप सभी के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर बल दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों तथा व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से

30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को इस वर्ष की विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और ये इसकी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 45 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है और जरूरत के अनुसार आगे भी मदद देने को तैयार है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गिन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब करते हैं शुरुआत अपने रात्रिकालीन सफर की। और इस सफर में पहला कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह है जीरो आर शो। आपके साथ रहेंगे हम पूरी रात, लेकर सुरों का साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे।

साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच सुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबे चंपा कोरबा थर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 755 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में चंपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें पहले से मंजूर हो चुके मडवा रानी सारकगुंडिया सेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। इस कॉरिडोर की पहचान भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और हाई सिटी नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत की गई है, जिनका उद्देश्य माल ढुलाई को और बेहतर बनाना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने

अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मंजिल तो खैर किसकी कौन बताता है, ये तो वक्त तय करता है, लेकिन कई बार होता यह है कि किसी के ज़रिए आपको मंजिल का रास्ता मिल जाता है, किसी ख़ास इंसान या किरदार के ज़रिए, या फिर किसी किस्से या कहानी या घटना के ज़रिए जो आपके जीवन में कभी घटी हो, और वहीं से आपको अंदाज़ा लग गया हो अचानक कहीं चलते चलते कि यहाँ से शायद वो रास्ता होकर जाता है जो मुझे मेरे मकाम तक लेके जाए, मेरी मंजिल तक लेके जाए। और ऐसा होता है, कई बार हम ध्यान देते हैं, कई बार नहीं भी दे पाते, लेकिन अगर आप सब कुछ चौकस होकर देखें तो ये मैंने कहा ना कि कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा होता है। आप जब स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वहाँ आपके माता पिता की गाइडेंस आपको रास्ता बताती है। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने आपको बता दिया हो कि ये करना है और वो आप कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि उनकी किसी बात में आपकी मंजिल आपको दिखने लग जाती है। खैर, कहने का जो मतलब है इतने फलसफे गढ़ने का, वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिविटी मिल ही जाती है अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों में, स्कूल कॉलेज में, या फिर वहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर चलते हुए हमें कई बार लग जाता है कि हाँ, यहाँ से कुछ मुझे सूझा और मुझे ये करना है, तो पॉजिटिविटी का रास्ता आपको ढूंढना पड़ता है, आप ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है। सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको मंजिल भी मिल जाएगी। फिलहाल अभी हमारी मंजिल है आप, और अगर जगे हुए हैं आप तो आपकी मंजिल है हम, और प्रोग्राम है सुहानी रात। रात को सुहाना करने का ये जो खूबसूरत अभियान है, आज इसकी अगवानी मैं कर रहा हूँ आकाशवाणी रेनबो 102.6 के मार्फत। और अगर आप कहीं दूर दराज में हैं, दिल्ली NCR या फ्रीक्वेंसी की जद से बाहर, तो वहाँ आपको मिलेगा न्यूज़ ऑन एयर ऐप का रास्ता, जिससे आप हमें देश और दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से बैठकर सुन सकते हैं। फिलहाल बता दूं, समय हुआ 1:13 और कार्यक्रम का आगाज़ हम कर चुके हैं, जिसका नाम है सुहानी रात, मेरे यानी रजत के साथ, यहीं आकाशवाणी रेनबो पर। एक बार फिर बता दूं, आप जुड़ना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो 9868107070 भी एक रास्ता है। 9868107070 पर आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मैं हूँ रजत, आपका इस्तकबाल करते हुए, आपको खुशामदीद कहते हुए इस शानदार प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहानी रात, मेरे यानी रजत के साथ।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबक कम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य के प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की आलोचना की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर समय हुआ है 2:05 और आइए अब ले चलते हैं हम आपको हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है भुलाए ना बने। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीतों को जिन्हें कभी भी भूल पाना संभव नहीं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के

प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इसमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में NCR के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, सुस्वागत है एक बार फिर से मिडनाइट मेलोडीज। इस बार नए रंग में आती हुई, नया रंग इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि रंग मैं भर के लाया हूँ इसमें, और ये रंग आपको सराबोर करने वाले हैं अब से लेकर आने वाले 40-45 मिनट तक, जब हम बॉलीवुड के खूबसूरत नंबर्स, खूबसूरत गाने, वो गाने जो अमर हैं, जो गाने चलते रहे, चाहे वो 90s की बात हो, 80s की बात हो, या उसके बाद की बात हो, आपसे रूबरू कराएंगे एक बार फिर से। और खूबसूरत गानों के साथ साथ रहेगा आपके दिलकश ख्यालों का भी इंतज़ार, जो कहीं ना कहीं इन्हीं गानों की डोर से बंधे रहे एक ज़माने में। आज भी जब हम रंगों की बात करते हैं तो आपके ख्याल, आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपके वो अरमान जो अभी किसी लिफाफे में है और वहाँ से निकलकर परवान चढ़ने वाले हैं, उनको साथ लेकर हम चलना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ मैसेजेस पर बात होती रहे, अगर हो सकता है तो। लेकिन आप अगर सुने सोए नहीं हैं तो जुड़िए इस प्रोग्राम के साथ, मिडनाइट मेलोडीज जिसे हम कहते हैं, और एक अच्छे खासे कलेक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। रजत, 3:14 हो चुके हैं घड़ी के मुताबिक, आप जुड़े हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी रहेगा आपका इंतज़ार कि आप सुने और सराहें, आपको लगे कि रात जगे तो क्या किया, सोने हम नहीं देंगे आपको अगर आप सोए नहीं हैं तो। लेकिन हाँ, गानों के साथ आपकी जो यादें जुड़ी हैं उन यादों को ज़रूर एक नए कैनवास पर रंगने की कोशिश करेंगे, उकेरने का प्रयास करेंगे, ये वादा जरूर कर रहा हूँ मैं रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी 9868107070968107070 है हमारा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, जिससे भी आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है। तो है आप सभी का शान शान इस्तकबाल, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम एक बार फिर बता दूं, मिडनाइट मेलोडीज, मेरे यानी रजत के साथ।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2:00।

रेनबो पर। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत

बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चनैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात

की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ಗೌರಣಿ ದೇವುನಿಯಾದುಂದರಾಸ